0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: You got me going crazy.
2: This show is brought to you by.
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
2: You're listening to City FM 89.
6: Hold on, special delivery coming through.
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
1: City FM 89. You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: Sunroof for a premium experience.
1: अच्छी है पर मुझे तो 8 सीटर चाहिए थी.
0: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
1: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
0: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
2: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
5: वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर की खसूसी रियायत. मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची लोडर और दीगर दो और तीन पहियों वाली मुसाफिर या लोडर गाड़ियों के लिए है 20 लीटर पेट्रोल माहाना, जबकि 800 सीसी तक की छोटी गाड़ियों के लिए 30 लीटर माहाना तक है. रियायत हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहाँ रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ यानी इस्लामाबाद के लिए I, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए A, गिलगित बल्तिस्तान के लिए G, सिंध के लिए S, पंजाब के लिए P, खैबर पख्तूनख्वा के लिए K, बलोचिस्तान के लिए B, स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर भेज दें. रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर भेज दें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे. मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट www.pmfuelrelief.pk विजिट करें या QR कोड स्कैन करें.
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.
10: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
1: Coming up next,
5: The Rush Hour with ABD.
6: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89.
8: Trending today.
9: Instagram is rolling out a new and useful feature that gives users a little more control over what appears on their profiles. Users can now add posts they are tagged in directly to their main profile grid. Before, tag posts would be restricted to a separate tab only on a user's profile.
4: City FM 89.
10: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
11: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold, and hard to miss.
10: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
11: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats, and a dual-pane sunroof for a premium experience.
10: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
11: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
10: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks. अब समझ आया, सब क्यों देख रहे थे.
11: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
12: कॉफी का मूड है? तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
13: वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर की खसूसी रियायत. मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची लोडर और दीगर 2 और 3 पहियों वाली मुसाफिर या लोडर गाड़ियों के लिए है 20 लीटर पेट्रोल माहाना, जबकि 800 सीसी तक की छोटी गाड़ियों के लिए 30 लीटर माहाना तक है. रियायत हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहाँ रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ यानी इस्लामाबाद के लिए I, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए A, गिलगित बल्तिस्तान के लिए G, सिंध के लिए S, पंजाब के लिए P, खैबर पख्तूनख्वा के लिए K, बलूचिस्तान के लिए B, स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर भेज दें. रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर भेज दें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे. मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट www.pmfuelrelief.pk विजिट करें या QR कोड स्कैन करें.
3: City FM 89
1: on the dial.
14: Hey guys, welcome to The Rush Hour. I'm your host ABD and I hope you're having an absolutely amazing Wednesday. Guys, it is the day we are always waiting for. It is the best day of the week because it is the middle of the week. We are done with 2 days and we only have 2 more days to go before it is the weekend. That is the best part about Wednesdays. It is the 16th of September. If it is your birthday today, please WhatsApp in on 031-428-989-89. I'm going to cut to a break, play some music for you before we come back to famous birthdays.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज वी फाइव शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और एसएमएस की शेयरिंग अपनी पसंद की वी फाइव ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोसा ऐप से जैज 5G।
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
6: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए। अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे। टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान। तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89।
8: Mornings evolve, and so do we.
1: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
9: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
8: The freshest music, the hottest gossip.
1: And the energy Gen Z lives on.
8: It's bold, it's current, it's your morning routine.
1: The Breakfast Show.
8: Only on City FM 89.
10: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
11: Talk Room with Tapu Javeri.
12: City FM 89, I am playing you the best of the best dance music you can find. Up next, Stardust with The Music Sounds Better With You.

0: Your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: Log on to facebook.com/cityfm89 and share your feedback.
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G
1: सिटी FM 89,
5: योर ड्राइव अलोंग कंपेनियन।
6: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
7: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89. City FM 89, we are playing your song.
8: That text, phone call, and notification can wait.
9: Avoid using your phone while driving. Doing so not only endangers yourself, but also endangers other drivers and pedestrians, and puts you at a risk of getting into an accident.
8: Before heading out, connect your mobile device to your car's Bluetooth infotainment system, or use earphones or speakerphone so you don't have to look at your screen.
9: Only answer emergency calls and emergency texts after you've parked your car to the side of the road and turned your hazards on.
8: Keep yourself and those around you safe. Stay aware with City FM 89.
10: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
11: Dark Room with Tapu Javeri.
12: Although his father is famous for a different reason, this is Robin Thicke with Blurred Lines.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
0: Coming up next.
1: Future Sounds.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Instagram is rolling out a new and useful feature that gives users a little more control over what appears on their profiles. Users can now add posts they are tagged in directly to their main profile grid. Before, tag posts would be restricted to a separate tab only on a user's profile.
4: City FM 89.
7: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
8: AG 9
9: We're playing your song.

0: the perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: City FM 89
3: On the dial. You're listening to
2: Future Sounds.
4: Future Sounds.
5: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruta.

0: Road Rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
4: Mornings evolve, and so do we.
5: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
6: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
4: The freshest music, the hottest gossip.
5: And the energy Gen Z lives on.
4: It's bold, it's current, it's your morning routine.
5: The Breakfast Show.
4: Only on City FM 89.
7: You're listening to City FM 89.
5: You're listening to
0: Future Sounds.
8: Future Sounds.